तम यते स्वयं स्वगतिनाम भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनाम कृतहीनाम हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतम कुलजना प्रभवश्च लज्जा ताम